0: चिकित्सालय काठमाडौँ, फोन 01-4110-6690 41106 96।
1: स्वस्थ जीवनका लागि आयुर्वेद अपनाऊ।